0: उनकी काफी सुनी है। In the other zone, Mary Zebra Adam 1, Edward 2.
1: Lincoln 230. Lincoln 230.
0: Person supervisor, give me a 21 reference at 240, please.